0: देखो यार नकदो नकद सोते हैं, उधार है ही इस बारगाह में, बस शर्त ये है कि मिन्नत की जाए उस बारगाह में, सुभान अल्लाह। और ये भी या इली अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने पहले कहा जी, मैंने तो पहले कहा जी, अरे वाह, नकदो नकद का सौदा है भाई, ये आंसू रायगा नहीं है। मालकों की बारगाह में एक मिनट लगा, उन्होंने मदीने के ही
1: हमारे जो सफीर मदीना हैं
0: उनकी ड्यूटी लगाई है कि नहीं नहीं, ये जो आंसू तड़प तड़प तड़प कर निकल रहे हैं और क्या कह रहे हैं।